0: नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया सादा कुर्बान किता कुर्बित हो जिस दिन है बढ़िया
0: कहे नानक सुनो।

असंख मूर्ख अंध घोर संघ झूर राम घोर संघ यमन कर जाय जूर असंख गाल बढ़ हत्या कमाए संघ बाबी भाव कर जाय संघ कूड़ यार गुणे विराए।

अजुद के रंग तन के नाम अनेकानंता करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तुथा सुहिन बन ब्रह्मान नदरी करम पबै निशान कट पकाई उथै पाए नान गया जप जाए धर्म खंड काय धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पवन पाणी।

दुर्गेशवरं परम सिद्धे नमो राजेशवरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लो माता अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जो जुगेशवरं परम जुगते

कृतः अमित वेश्वर परमेश्वर कृता कृत अमृतामृत अजबा कृत अमृतामृत निर्नायक खलकायक विश्वंबर करुणालेह नृपनायक सर्वायक पापंजन रंजन है

0: सो अविनाचित
1: जो वैराइता सो प्रीत
0: के ग्रह पितर वसे
1: अंध केल माया रंग रस
0: कर्माने मने प्रतीत
1: काल न आवे मुड़े चीत
0: काम क्रोध तो
2: झूठ विकार महालोभ त्रोह
0: जाने कई जानम
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म

0: पचति अमृत खाए।
1: तिसका कर को रख मन माहे,
0: प्रसाद सुगंधत तन लावे है।
1: तिसको सिमरत परम गत पावे,
0: प्रसाद बस है सुख मंदर।
1: तिसे तिहाए सदा मन अंदर,
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना।
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा तिहाए तिहावन जोग,
0: प्रसाद पाठ पटंबर हटावे है।
1: तिसे तिहाए तबर भावे,
0: प्रसाद सुख से सोई जय।
1: मन आठ पैर ताका जस भाई जय,
0: प्रसाद सब को माने।
1: मुक्ता को जस रसन बखाने,
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म।
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म,
0: जबत दर्ग है मान पावे है।
1: नानक पासे ती कर जावे,
0: प्रसाद आरो किंचन देही।
1: लेवलावो तिस राम स्नेही,
0: प्रसाद तेरा ओला रहता।
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: प्रसाद तेरे सकल छिंदर ठाके।
1: मन सनी पर ठाकर प्रभु ताके,
0: प्रसाद उसको ना पहुँचे।
1: मन सास सा सिमरो प्रभु जे,
0: प्रसाद पाई धरुण लब देहे।
1: नानक ताकी भक्त करे,
0: प्रसाद आप उखन पहरी जे।
1: मन तिस मन को आलस की जे,
0: प्रसाद असब हस्त असवारी।
1: म

0: प्रसाद हस्त कर चल है,
1: यह प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: प्रसाद परम गत पाव है,
1: यह प्रसाद सुख सहज समाव है,
0: प्रभु त्याग अवर कत लागो,
1: वर प्रसाद नानक मन जागो।

0: होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे विमान
1: साध के संग करते सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे

0: तरुपराकाशम्
1: ज्ञानी के मित्र सतर समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नानी अभिमान
1: ज्ञानी ऊचते ऊचा
0: मन अपने है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जान पाए
0: नानक जिन प्रभाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: बात रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वासी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

0: व्याप
1: राम ज्ञानी का बड प्रताप
0: राम ज्ञानी का दर्श बड पागी पाई है
1: राम ज्ञानी को बल बल जाइए
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

0: भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: ते विनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: संग पाप मल खोवे
1: तिस भगवती की मति उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल।

0: सिमरत बूझै मूल
1: सुख न जाने असूल
0: पर ना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देश
0: मंत्र सर्व को ज्ञान
1: जो वरना मैं जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए
1: सास संग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंतरियर तारे
1: पाश प्रेत मुग्ध पातर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण काम
0: जुगत कितना पाए।

0: जन्म मरे
1: संत की दुख ना सुख दे डरे
0: संत जो दुखी को नाही ठाओ
1: नानक संत पावे तन लय मिलाए
0: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
1: संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे
0: संत जो दुखी को ध्यान परमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास बिना मृतक की लोथा

0: पुरख प्रताप
1: आप जुकाए नानक जाप
0: जिन प्रभु जाता सो शोभावंत
1: संसार उपरे तन मंत
0: प्रगटे सेवक सगल उदाहरण
1: प्रगटे

0: सा टूटे हो रोग
1: मंदिर
0: को थामे थमन
1: शब्द मने समन
0: खांड नाव चढ़ तरे
1: प्राणी गुरु चरण
0: अंधकार दीपक प्रगास

0: कलेलाष्टर कोडलाक है
1: जिसका सास न काढ़त आप
0: नाको राख दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बो पात
0: जिसके करता बिनते जात
1: मारी न राखे अवर न कोई
0: सर जिया का राखा सोए
1: सोच करे रे प्राणी
0: जप नानक प्रभ दर पढ़ाई
1: बारंबार वार प्रभ जपिए
0: पी अमृत मंत्र तरपिए
1: राम रतन जिन गुरमुख पाया
0: इसके शवर नहीं दर्शाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नाम सुख नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने
1: उठत बैठत सोबत नाम
0: को नानक जन के सदकाम
1: जस जे बादिन रात
0: प्रभु अपने जन की नींदात
1: हरि भगता तुम कह चाहे
0: प्रभु अपने सोरे आसमाए
1: जो खोआ खोबत सो जाने
0: प्रभु अपने का हुक्म पछाने
1: जिसकी महिमा कौन बखानो
0: जिसका गुण कै एक न जानो
1: आठ पहर प्रभु बसे हजूरे
0: को नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट लिखे
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व तो

0: सत जान है।
1: सो सतगुरु जिस दे हर नाओ,
0: अनेक बार गुरु को बरियाओ।
1: सर्व निदान जी का दाता,
0: आठ पैर पार ब्रह्म अंतरात्मा।
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म,
0: एक आप नहीं कछ परम।
1: सहत सियान पलया ना जाइए,
0: नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाइए।
1: सफल दर्शन पेख्त पुनीत,
0: पार्षद चंद्र निर्मल रीत।
1: पेख्त संग राम गुण रवे,
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे।
1: सुनकर बचन कर आगाने,
0: मन संतो का तम कियाने।
1: पूरा गर अखियो।

0: सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सब बचन
1: सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जाता किसकी यह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो होए सोई सुख मान
1: कान करावन हार प्रभ जाने
0: अंदर वसे बार पी ओही
1: नानक दर्शन दे सम होही
0: आप सत किया सब सत
1: तिस

0: गुर का सुनो उपदेश
1: पार ब्रह्म कर पीख
0: सास सास सिमरो गोविंद
1: मन अंतर